आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में आवन जावन दे ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान अगस्त 19th वेंसडे का दिन ओह माय गॉड वीकेंड बहुत ज्यादा नजदीक है तो खुशी का जो है ठिकाना ही नहीं है कल सोचो क्या क्रेजी होने वाला है यार जी कुछ ही देर में आएगा तो ही प्यार हो गोरी तो यार इस टाइम के जो रीमिक्सेस भी थे ना दे वर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल यार कुछ तो है तुझसे अरिजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत गाना और साथ में अरिजीत सिंह की ही आवाज में हॉलिडे मूवीज से
2: आज दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है आज दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है
1: लगता है क्या अगर लग रहा है तो एक आधी शायरी हो जाए यार

here for you in this hour. और ढेर सारी बातें करनी है आपसे, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, पर शुरुआत करेंगे आपसे. कैसा गया आपका कल का दिन, और आज अभी क्या कर रहे हैं? अभी उठे हैं? ऑलरेडी रास्ते में हैं? काम के लिए निकल चुके हैं? निकलने वाले हैं? व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन? सब जानना चाहूंगी. 3311063 पर एक बढ़िया सा गुड मॉर्निंग भेज दो और बता दो कैसे हो मेरी जान, सब ठीक है ना? Stay tuned to Radio Allah. Jeevan Das.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.
2: Hello to all the listeners of Radio Olive 106.3. Stay tuned.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: Agent Vinod say Arijit Singh you asked me wrapped up beautiful track only on Radio 106.3 FM Tanisha ke sath bhi this morning chal rahe hain yahan par aur messages ka silsila shuru ho jaye so Nazmi ji ka message aaya hai good morning again and again remind yourself why with a strong enough reason why you will be able to do what's required at any time and in any circumstance mujhe dobara padhna padega ruko Again and again, remind yourself why. Okay. कि आप या बेसिकली शी इज ट्राइंग टू से कि अपने आप को रिमाइंड करो वट एवर यू आर डूइंग वो आप क्यों कर रहे हो किस लिए कर रहे हो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट एंड क्योंकि कभी कभी ना इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग और अचीविंग समथिंग इन आवर लाइफ हम अपना जो एंड गोल होता है वही लॉस्ट कर जाते हैं किसी और ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं तो वो वाई को याद करते रहना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट And Santu ji ka bhi message aaya hai good morning my dear friends have a wonderful day may the day be filled with good health happiness and love stay safe with lots of good vibes Harpal Santu from the consecrated Jio Bindas and Shashikant Patil ji ka bhi message hai kehte hain three simple rules in life if you don't go after what you want you'll never have it true if you don't ask the answer is always no Exactly. If you don't step forward, you're always in the same place. सही बात है किसी चीज से डरने का नहीं है यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगी चीजें इट्स ओके बी रेडी फॉर बोथ सर्कमस्टेंसेज हाँ हुई तो बढ़िया ना हुई तो भी बढ़िया एंड अबरार जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी आई होप वी ऑल हैव एन अमेजिंग डे
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल
1: ओए होए
2: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस
1: हां जी ऐसे ही बस हंसते खेलते आज का दिन भी निकल जाए और फिर आ जाएगा थर्सडे मेरी तो सारी खुशी थर्सडे पे टिकी हुई है Well, this Friday is special for me. क्यों वो मैं कल बताऊंगी आपको फिलहाल हम बढ़िया सा एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं एंड लौट के रेडियो श्रीदेव में स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
5: कूल सॉन्ग
6: Honey, when are you coming?
7: I'm coming, baby. I'm on my way home.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

लाइफ इन अ मेट्रो से सोहम चक्रवर्ती की आवाज में बहुत सुंदर गाना इन दिनों दिल मेरा, देखो दिल कह रहा है ना कर डालो जी हाँ। यार लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और इमरान जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग टू द वॉइस दैट पेंट्स आवर मॉर्निंग्स विद गोल्ड, so sweet. Before your mic goes live and you fill the airwaves with magic, I wanted to send a frequency meant only for you. Oh, may your day be as deeply beautiful, resonant and cherished as the comfort you give to everyone listening. That is so beautiful. Thank you so much Imran for sending such sundar sundar messages every morning. ऐसे दिन बना देते हो यार आप भी। अगर मुझे भेजना चाहते हो मैसेज गुड मॉर्निंग का भेज दो यार, 3311106 इज द नंबर। बाकी एक बहुत सुंदर चीज मैंने रियलाइज करी, मुझे किसी ने बताई थी एक्चुअली, तो आई वाज लाइक यार दैट मेक सेंस। सो आई एम अ वेरी एंग्शियस पर्सन, जब भी कुछ बड़ा करने के लिए जाती हूँ और इनफैक्ट कुछ नया आउट ऑफ कम्फर्ट जोन करने जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत एंजाइटी होती है। एंड सो दिस पर्सन टोल्ड मी कि यार एंजाइटी से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये ओवर थिंक करना एंड ऑल दैट, वो जो क्लीशे वाली एडवाइसेज होती है ना, दैट डजंट रियली वर्क, इट्स ईजियर सेड देन डन। बट यू थिंक कि तू कोई भी काम करने जा रही है तो ऐसे सोच कि यार मैं तो फन के लिए जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इवेंट अगर खराब हो गया, लाइक से आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब और मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और मेरे दिमाग में अगर ये चल रहा है ना कि यार अगर ये इंटरव्यू मेरा नहीं क्लियर हुआ तो बस मेरा तो करियर ही खत्म है, खत्म सब कुछ, इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। व्हेन यू गो इन दैट माइंडसेट, उस जोन में चले जाते हो ना, तो आपके ब्रेन को ना डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है कि भाई ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है, आप जो बोल रहे हो वो सही है उसके लिए। सो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वे तो वो फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट सो एंग्शियस, तो बनता हुआ काम भी बिगड़ ही जाता है इवेंचुअली। सो हर चीज़ को ऐसे सोच के करना है कि ठीक है भाई अगर ये इंटरव्यू निकल गया तो बढ़िया ही है, नहीं भी निकला तो भी बढ़िया, ये एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या नहीं करना है अगले इंटरव्यू में। इस माइंडसेट के साथ चलेंगे ना तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, एंड आई थिंक दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट हैक फॉर ऑल द एंग्शियस पीपल आउट देयर, एंड आई नो इट्स नॉट जस्ट मी, काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं। और एन्जाइटी ना आपको आती हुई अच्छी खासी चीज़ें भी भुला देती है उस वक्त में, वो इम्पॉर्टेंट मोमेंट में। सो उसे जगह ही मत दो, बोलो भाई मैं तो फन करने के लिए जा रहा हूँ, तुझे जो करना है तू करती रहे, ठीक है ये ट्राई करके देखना, इट एक्चुअली वर्क्स। सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे अरिजीत सिंह की आवाज में, हॉलिडे मूवी से आज दिल शायराना, स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ओह नो, फिर से स्कूल।
0: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं आप पर. और यही होता है यार, जो चीज़ मना की जाती है ना करने के लिए, वो करने का थ्रिल अलग ही होता है ना. वह कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो सुन लेना चाहिए. लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल है कि प्रियंका चोपड़ा, यस, एंड जीजू निक जोनस, अगर प्रियंका चोपड़ा निक जोनस को कहेंगी कि गाना गाओ, तो कैसे कहेंगी एक वर्ड में? जी, इट्स एन इंग्लिश वर्ड, इतना बता देती हूँ. और हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हेल्दी रहने के लिए हम उसे प्रेफर करते हैं, और काफ़ी अदर फूड आइटम्स में भी. सोचे ज़रा, अगर प्रियंका चोपड़ा निक जोनस को गाना गाने के लिए बोलेगी तो कैसे बोलेगी? 3311063 पर मैसेज कर दो या फिर कॉल कर दो 4444106 पर. ये हद लेम है, आई एम टेलिंग यू, मतलब क्रेजी लेम. अगर प्रियंका चोपड़ा निक जोनस को बोलेगी कि और गाना गाओ, तो कैसे बोलेगी? अरे अगर आप ध्यान से मेरा सवाल सुनोगे ना, इसी में जवाब है. जी हाँ, इट्स जस्ट वन वर्ड आंसर. अगर प्रियंका चोपड़ा निक जोनस को और गाना गाने के लिए बोलेगी तो कैसे बोलेगी, बताएं मुझे 3311063 पर. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ओलिव. जियो बिंदास
0: रेडियो ओलिव पर. फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग अर्जित तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Beautiful track from the movie Kabir Singh, Sucheta Parampara Tandon ki awaaz mein, only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain ab. Lame Jams ka mera sawal tha, agar Priyanka Chopra Nick Jonas ko aur gaane ke liye kahegi to kaise kahegi? To Sanjay ji ne koshish ki hai.
2: Hi, good morning Tanisha.
1: Good morning.
2: So Priyanka Chopra Nick Jonas ko jo gaana gaane ke मोर गाना गाने के लिए बोलेगी तो बोलेगी मोरिंगा
1: कैन बी बट नॉट एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर. गुड ट्राई द संजय जी. हाँ एंड मुझे करेक्ट आंसर यहाँ पर मुसरत जी ने भेजा है, चिंतन जी ने भेजा है और सैफ का मैसेज आया है मुझे, विनायक जी ने भेजा है. द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिक और गा Nick. Yes, I know. शांत हो जाओ, बढ़िया गाना भेज रहे हो आपको कूल डाउन करने के लिए. बट यार जरूरी था, मतलब ऐसे ही होता है ना, लेम जैम से ये. You asked for it और I told you before.
3: दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो.
1: K3 जी से ये कमाल के गाना और रंग दे बसंती टाइटल ट्रैक. हाँ जी, और कॉकटेल टू से माशू का भी है लाइन में.

0: कृति सैनन लेकिन लगी बहुत जबरदस्त है इस मूवी में, बहुत ही खूबसूरत. फिलहाल सुनते हैं बेबी डू डाई डू से ईश कबीना 2.0. स्टे ट्यून ऑन जियो बिंदास.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha Aapke Saath, Bindaas Morning Show rahe hain aap. The answer is no. Yes, it's 34 degrees right now and it feels like 45 degrees. Or aaj ka jo highest temperature ja sakta hai wo 44 ho sakta hai aur lowest could be 36, that too in night. Right now it is 34. Haan, theek hai. Okay, fine. Baki med department ne kal hi bata diya tha ki bhai sahab 20 and 21st August ko Friday ko, which is an important day. Us din jo hawaye hain wo thodi tez ho sakti hai aur saath mein तेज हवाओं के डस्ट भी हो सकती है. सो प्लीज़ ख्याल रखें, विजिबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, हैम्पर हो सकती है. सो वाइल ड्राइविंग बी वेरी केयरफुल. अगर आप कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हैं ऐसे ड्राइव करके, तो वेदर को ज़रा ख्याल में रखकर ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हैं, अपना ख्याल रखा करो, ठीक है मेरी जान. और सुनते रहो रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम, जियो बिंदास.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू शॉप।

0: are you?
1: Tanisha. Tanisha.
2: हां जी तनीषा हूं मैं. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहां पर. एंड अल जानिब एरेना जो है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट एवर स्टेडियम व्हिच वाज ओरिजिनली बिल्ट फॉर फुटबॉल, बट अब उसमें बास्केटबॉल भी खेला जाएगा. यस, सो अल वक्रमी जो अल जानिब स्टेडियम है वो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है बास्केटबॉल एरेना के लिए फॉर फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का 2027 जो कि होने वाला है 27 अगस्त से 12 सितंबर तक यहाँ कतर में. एंड वन ऑफ द फोर वेन्यूज इट इज, ठीक है. एक तो अल जानिब बताई दिया, दूसरा इज लुसेल एरेना, थर्ड इज अली बिन हमद अल अतिया एरेना, एंड द फोर्थ इज दुहेल एरेना. ये चार जगह पर होने वाला है फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप. और अल जानिब की कैपेसिटी जो है वो है 8,200 स्पेक्टेटर्स की है. सो इफ यू हैवंट यू नो प्लान फॉर दिस, कर लो, बढ़िया है, मजा आने वाला है. एंड दिस ऑल्सो शोज की यू नो जो भी अमेजिंग वेन्यूज हैं हमारे पास कतर में फॉर सच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, उनमें ये भी एबिलिटी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी अडेप्ट किए जा सकते हैं, यू नो यूज किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं. सो सस्टेनेबिलिटी में जान, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड हमें पता है कि कतर से आगे स्पोर्ट्स इवेंट यू नो ऑर्गेनाइज करने में, एग्जीक्यूट करने में कोई नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. हमने जो बेंचमार्क सेट किया है ना, इसके ऊपर जाना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है. कंट्रीज आर स्केयर्ड नाउ कि भाई हम रहने देते हैं, आप कतर को ही दे दो. और ये बहुत बढ़िया बात लगती है मुझे. सो या लॉट इज कमिंग आवर वे. बहुत ऐसे हम बिजी होने वाले अपने वीकेंड्स पे और वीकडेज पे भी, वी नेवर नो. सो रेडी हो जाइए उसके लिए. फिलहाल भेजिए दलेर मेहंदी साहब की आवाज में रंग दे वसंती. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास.

0: Are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Oh no, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: Tanisha.
1: बहुत ही कमाल के गाने ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड आई एम गेटिंग मैसेजेस ओवर हियर कि बैक टू स्कूल के लिए रजिस्टर करना है, कैसे करें. मैं बता देती हूँ, बहुत सिंपल है. आपने जाना है olive.qa पर, दैट इज आर वेबसाइट. ओके, उस वेबसाइट पर जाकर आप बैक टू स्कूल का जो बैनर है उस पर क्लिक करेंगे, वहां से वो फॉर्म ओपन हो जाएगा. आपने बस वो फॉर्म भर देना है, एंड फिलिंग अप दैट फॉर्म इज एज गुड एज कॉन्फर्मेशन. ठीक है, 27 अगस्त को ये इवेंट होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में, दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक. बहुत सारे अमेजिंग गेम्स प्लान है बच्चों के लिए, यू नो, फन चैलेंजेस होंगे और बहुत सारी मस्ती होगी. स्कूल वाले रूटीन में दोबारा लौटने से पहले ये फन तो बनता है मेरी जान. सो डू नॉट मिस दिस आउट. अपने बच्चों को रजिस्टर करो, अपने आसपास लोगों को भी बता दो कि भैया ये हो रहा है 27 को अबू सिद्रा में. olive.qa पर जाकर रजिस्टर कर लो फटाफट से. जी हाँ, एंड अगर फिर भी मुश्किल हो रही है वेबसाइट ढूंढने में तो मुझे मैसेज कर दो 3311063 पर. आई विल शेयर द वेबसाइट विद यू एंड यू कैन रजिस्टर देयर.
2: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
3: कॉल 7022525.
2: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: 106.3 FM, Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: डॉक्टर ऑन एयर brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Akshay Kumar.
5: Hi, this is Anushka Sharma.
6: And I'm Ashwin Vasi.
7: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: तनिषा
1: हर्षदीप कौर की आवाज में कत्या करूं ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड बैक टू स्कूल सीजन इज हियर और साथ में ट्रैवलर्स टूरिस्ट का आना भी कतर में शुरू होने वाला है क्योंकि वेदर अब प्लेजेंट होने वाला है. सो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं ट्रैवलर्स के लिए जो भी दोहा में आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें ईजियर हो जाएं उसके लिए और बहुत बेसिक चीज़ें हैं. इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू कि हर चीज़ का ख्याल रखा गया है कतर में. जी हाँ, अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और स्ट्रोलर नहीं है आपके पास तो आपको फ्री स्ट्रोलर्स मिलेंगे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंड यू कैन फाइंड दीज स्ट्रोलर्स लोकेटेड अक्रॉस द टर्मिनल कॉन्कोर्सेस. एंड अगर शटल बगी सर्विस आपको यूज करनी है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं डेजिग्नेटेड स्टेशन से एंड दे कैन ड्रॉप यू ऑफ एट द अराइवल्स इमिग्रेशन एस्केलेटर्स और चीजें फास्ट करने के लिए ई गेट्स आर देयर. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग हियर. सो आप ई गेट का इस्तेमाल करें अगर आपको क्यू बहुत लंबी लग रही है तो उसे प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है और हासिल फ्री हो जाता है. एंड इफ समबडी इज गोइंग टू पिक समवन फ्रॉम द एयरपोर्ट सो ये सजेस्ट किया जाता है कि कार पार्किंग जो है उसे यूज करें क्योंकि वो अराइवल से काफी नजदीक है तो ज्यादा चल के आना नहीं पड़ता है अदरवाइज काफी लंबा रूट हो जाता है. सो इन चीजों का ख्याल रखें. बाकी सब बढ़िया है. बैक टू स्कूल सीजन चल रहा है हर जगह ऑफर्स ही ऑफर्स और बहुत सारी एक्टिविटीज और इवेंट्स हो रहे हैं तो एंजॉय करो मेरी जान और सुनते रहो रेडियो ऑलिव जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात है.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

हम तो मूवी से बहुत ही कमाल का गाना y'all listening to radio 106.3 FM तनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड आई हैव कम अक्रॉस अ रियली ब्यूटीफुल स्टोरी एक स्पोर्ट्स फैन की ठीक है सो देयर वाज दिस गाय कॉल्ड अली और वो ना एक स्टेडियम से बैन हो गए थे एंड ही वाज लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट फुटबॉल एंड उन्हें बैन कर दिया गया था उनकी कंट्री में उस एक स्टेडियम से जहाँ पर उनकी फेवरेट टीम खेलने वाली थी एक साल के लिए बैन था तो देयर वाज नो अदर वे फॉर हिम टू यू नो गो एंड विटनेस दैट मोमेंट जब उनकी टीम खेल रही है और जीती भी लाइव वो नहीं देख पा रहे थे सो ही वाज लाइक व्हाट शुड आई डू आई मीन आई कांट ब्रेक द रूल ऑब्वियसली आई एम बैन एंड ऑल और मुझे नहीं देखना है टीवी पे मुझे नहीं सुनना है रेडियो पे आई वांट टू विटनेस दैट लाइव और अलग फील होती है यार स्टेडियम में बैठ के देखने की आपको तो पता ही है हाँ जी सो व्हाट ही डिड उन्होंने एक क्रेन हायर करी और उस क्रेन पे वो बैठे और वो क्रेन स्टेडियम की जो वॉल्स हैं उससे ऊपर हाइट पर उन्होंने उसको स्टॉप करवाया एंड ही वॉज वॉचिंग द मैच लाइव या He was watching it and everybody was baffled after seeing this कि ये क्या कर रहे हैं कुछ टाइम तक तो वो देख पाए देन अथॉरिटीज केम और उन्हें रोक दिया गया उन्हें नीचे उतार दिया गया और उन्हें नहीं देखने दिया गया बट दैट इज सो ट्रू यू नो ये जो पैशन है ना स्पोर्ट्स के लिए दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी उस वजह से जो अपनी जो एक लॉयल्टी है लोगों की अपनी फेवरेट टीम्स के लिए अपनी फेवरेट प्लेयर्स के लिए वो हम यहाँ पे फुटबॉल में भी देख चुके हैं अभी जब फीफा चल रहा था इट वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड आई विटनेस दैट लाइव लाइक व्हेन आई वेंट टू वॉच द मैचेस यू नो जहाँ पर भी स्क्रीनिंग्स हो रही थी इट वॉज अमेजिंग एंड इट इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब एंड द एनवायरमेंट इट्स ब्यूटिफुल एंड देन देर इज अली एज वेल या ऐसी कोई क्रेजी चीज़ आपने की है किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए आप क्रेजी हो इट कैन बी स्पोर्ट्स इट कैन बी अ मूवी इट कैन बी यू नो समबडी यू एडमायर आपकी इंस्पिरेशन है कोई कोई भी क्रेजी चीज़ ऐसी की है आपने बताएं मुझे 3311106 3 पर सेंडिंग अ ब्यूटिफुल मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर गाना है ये बहुत ज़्यादा शिकायत है इन द वॉइस ऑफ मोहन कानन फ्रॉम द मूवी लुटेरा स्टे ट्यून्ड एंड जी विद अस

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Evie or Danny Kivaz, Mewe Haani, absolutely beautiful track. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Danisha aapke saath. Bindaz morning chal rahe hain yahan par aur reminder dene aayi hoon ji ki agar abhi tak hame follow nahi kiya hai radioolive.qa par, that is our social media handle, to kuch miss out kar jaoge, bata rahi hoon main. Fatafat se jao follow kar lo if you haven't so far, aur agar karke rakha hai to ekdam pehli nazar us par tika ke rakhna kyunki कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, चलने वाले हैं. सो या अलॉट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. चेक करते रहिए हमारा सोशल मीडिया एंड पार्टिसिपेट करते रहिए. यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग एक्साइटिंग मेरी जान. यस, फिलहाल बहुत सुंदर गाना भेज रही हूँ दीपाली सहाय की आवाज में तेरे पास में. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास.
1: रेडियो ओलिव पर Song of the Hour. Yeah,

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।

0: मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: तनिषा
1: नेहा कक्कड़ और नकाश अजीज की आवाज में धतिंग नाच। ये तो भैया कल शाम से होगा क्योंकि थर्सडे है। हां जी, इंतजार नहीं हो रहा ना, मुझसे भी नहीं हो रहा। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड वीकेंड आ रहा है तो ये भी देखना होगा कि क्या करना है। पर अभी वाले वीकेंड का मैं बाद में बताऊंगी, आगे वाले वीकेंड के प्लान्स मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कटारा में होने वाली हैं बहुत ही कमाल की दो एग्जिबिशंस, जो कि सितंबर 2 को स्टार्ट होगी। एंड ये जो एग्जिबिशंस है कटारा कल्चरल विलेज में होंगी और अक्टूबर 7 तक चलने वाली हैं। पहली एग्जिबिशन इज फ्रैक्चर्स ऑफ द फ्यूचर, एंड इट इज़ अ ग्रुप एग्जिबिशन। बेसिकली चार आर्टिस्ट की है ये, लाइक उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो वहाँ पे शोकेस की जाएंगी, एंड इट एक्सप्लोर्स द आइडिया एंड पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। यस, दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग, राइट? आई वुड लाइक टू गो एंड चेक इट आउट। और जो उनका काम है वो अप्रोच, लाइक उसमें जो अप्रोच उन्होंने, आर्टिस्ट ने लगाई है, दैट इज साइंस फिक्शन, सिस्टम थिंकिंग, ओरल हिस्ट्री एंड मटीरियल एक्सपेरिमेंटेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा साउंड कर रहा है, सो या इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू गो देयर। एंड जो दूसरी एग्जिबिशन है वो है द लाउंज, व्हाट कैन ए रूम रिमेंबर। वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ये भी यार। सो ये सोलो एग्जिबिशन है बाय अ कतरी आर्टिस्ट, एंड दैट इज़ हेसा अलकुवारी, और ये उनकी पहली एग्जिबिशन है, एंड इट फोकसेस ऑन द मीनिंग एंड मेमोरीज एसोसिएटेड विद द लिविंग रूम। ओ वाओ, दैट फील्स वेरी nostalgic. Yeah, so these two exhibitions are going to happen at Kitara Art Center September 2nd se lekar October 7th tak. Do not miss it out. If you are an art enthusiast, zarur check out kijiyega, aur nahi bhi hai to bhi jana chahiye. Dude, they are putting so much efforts in all this, we should go and appreciate that, right? हमें एक दूसरे के लिए चेयर करना पड़ता है यार। यस, फिलहाल आपके लिए बहुत ही कमाल का ब्रांड न्यू ट्रैक भेज रही हूँ, वारू फ्रॉम द मूवी मिर्जापुर। जी, पहले वाला जो था ओरिजिनल फ्रॉम द सीरीज, उसमें सिर्फ रोमी थे। नाउ दिस वन हैज श्रेया घोषाल एज वेल। स्टे ट्यून्ड, एंड जी बिंदास।

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: Shahrukh Khan.
4: I'm in number one. Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: स्कूली नंबर वन से तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? पानी पी लो यार, ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है. और स्पाइसी खाना भी अच्छा होता है कभी कभी. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनीषा, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. और क्रेजी चीजें हो रही हैं, ऑल दीज यू नो बिग ब्रांड्स व्हाट दे आर डूइंग विद अस. इंडिया से चीजें उठा रहे हैं इंस्पिरेशन के नाम पर, और फिर अपने बड़े बड़े ब्रांड्स के अंडर वो चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, और बढ़िया यू नो हेफ्टी अमाउंट उसके लिए चार्ज किया जा रहा है. एंड दैट इज़ सो अनफेयर. सो यस्टरडे आई सॉ कि एक ब्रांड ने, जो ग्रेटर नहीं होता जिससे हम पनीर या जिंजर ग्रेट करते हैं, हाँ, वो उसका फ़ोन केस बनाया है. इट इज़ लिटरली ऑफ यू नो दैट बिग साइज, और उसके अंदर आप अपना फ़ोन रखते हैं. वाई, कौन सा एस्थेटिक है ये, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है. एंड ऑल्सो आई सॉ वन इन्फ्लुएंसर, शी वॉज इन अ होम स्टोर काइंड ऑफ प्लेस, वहाँ पे क्रॉकरी वाले सेक्शन में थी वो, और उसने एकदम से वो कैमरा पहन, शी इज लाइक गाइस आई फाउंड दिस रियली क्यूट क्रोम प्लेट्स. एंड आई वाज लाइक क्रोम प्लेट्स, वाओ साउंड्स नाइस. जैसे ही वो प्लेट लेकर आई, इट वाज स्टील की थाली, या जिसमें हम घर में खाना खाते थे ना, और हम इतना एम्बेरस फील करते थे कि जब भी कोई गेस्ट आ रहा है तो हम उस स्टील की थाली को साइड कर देते थे. एंड वी वुड ब्रिंग आउट न्यू क्रॉकरी फॉर देम, कि यू नो थोड़ा सोफेस्टिकेटेड क्लासी ऐसे लगना चाहिए. एंड ये दीदी ऐसे उसको यू नो हाइप अप कर रही है कि क्रोम प्लेट, दैट इज़ एक्चुअली अ स्टील की थाली. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट ब्रैगिंग अबाउट आर थिंग्स, सो दैट ये इंस्पिरेशन लेकर उसका क्रेडिट ना लेकर जा पाए. क्या बोलते हो, मानते हो कि नहीं, सही बात है कि नहीं, आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: Delisha.
1: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में परदेश मूवी से मेरी महबूबा ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और देखो टाइम निकलता जा रहा है, फिर बोलना मत कि तनीषा ने बताया नहीं था. जल्दी से पहुंच जाओ रेडियो ऑलिव olive.qa पर, ठीक है, वेबसाइट पर जाओ. और ज्यादा तकलीफ हो रही है वेबसाइट ढूंढने में तो 3311063 इज द नंबर, वो तो सेव ही आपके फोन में, मुझे मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगी. और जाकर जल्दी से अपने बच्चों को बैक टू स्कूल के लिए रजिस्टर करवा दो. 27 अगस्त को हम मिल रहे हैं अबू सिद्रा मॉल में दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे तक. बहुत सारा फन होने वाला है, हमने इतने अमेजिंग अमेजिंग गेम्स प्लान करके रखे हैं. देर आर सम रियली कूल चैलेंजेस, बहुत सारी मस्ती होगी. स्कूल जाने से पहले एक एनर्जेटिक इवनिंग हमारे साथ बताइए जी. सो रजिस्टर कीजिए अपने बच्चों को, फटाफट से जाइए olive.qa पर, वहाँ पर आपको बैनर नजर आएगा बैक टू स्कूल का, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसे फिल कर दो, दैट्स इट. हाँ जी, और डू नॉट फॉरगेट द डेट 27 अगस्त अबू सिद्रा मॉल दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक.
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
1: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.
2: इश्क

0: Danisha.
1: You are listening to Radio 106.3 FM. Danisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो गया मेरी जाने का मेरी जान. मिलते हैं कल सुबह 6 बजे और थर्सडे है, वीकेंड है जी, तो कल तो बात अलग ही होने वाली है. बट फॉर टुडे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ. और छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देने का है, इट्स ओके, हो जाता है. लेट्स टेक इट वन डे एट अ टाइम. और बाकी सब बढ़िया है, फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेस्ट चल रहे हैं. डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग, यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग रियली एक्साइटिंग. बाकी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस चीज को हमेशा याद रखना और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

तो जी एक और दिन, एक और सुबह और एक और लाइव मस्त शो लेकर आ गई हूँ आपके लिए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइव मस्त, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाएंगे हम अमेजिंग वाली बातचीत के साथ। तो देखो यार, बॉलीवुड की बातें, फैशन की बातें और कुछ दिल की बातें भी हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून रहो आपकी कशिश के साथ 106.3 रेडियो ऑलिव पर। एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो और मेरे साथ यहीं पर बने रहो, अगर अमेजिंग फन जो है वो करते रहना है तो। और कहते रहो जियो बिंदास।

0: अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: या देखो मेरी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे एक बार कोई गाना पसंद आना शुरू होता है तो फिर वो रिपीट पे चलता है जब तक मैं उस गाने से बोर नहीं हो जाती। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आप आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं। अब देखिए यार, हुआ क्या है ना कि मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी आई थी, उसको प्रमोट करने के लिए सोनी म्यूजिक ने एक प्रमोशनल सॉन्ग जो है उसके लिए कोलैब किया था बंजारे डुओ के साथ, जो एक हरियाणवी जो है डुओ है जिन्होंने हमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग गाने दिए हैं, जैसे कि बैरन, और उनका एक गाना था बरसात जो प्रमोशंस में यूज हुआ था स्पाइडरमैन की। अब स्पाइडरमैन को जो है रिलीज हुए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी ये गाना मेरे दिमाग से मेरी फीड से जा ही नहीं आ रहा है, मैं जो है इसको रिपीट में सुनती जा रही हूं। सो इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं आप लोगों से डिटेल में बात नहीं करूंगी तब तक मुझे बेटर फील नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी देर में इस डुओ की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूं। सो स्टे ट्यून्ड रहो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: With Nesto Hypermarket, now opening on 19th August, Old Pass

शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि सपने ना बड़े देखते रहने चाहिए, क्या पता वो ऊपर वाला जो है आपकी एक दिन सुन ले और वो सपने पूरे हो जाए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, क्या होता है ना कि सपने कभी कभी हम इतने बड़े देख लेते हैं कि हमें लगता है कि यार ये तो कभी पूरे ही नहीं हो पाएंगे, एंड कभी कभी हम इतने बड़े सपने भी नहीं देखते हैं जितने बड़े हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सुमित और अनुज के साथ। सो ये जो है हरियाणा के एक छोटे से टाउन में जो है अपनी पढ़ाई कर रहे थे, एंड पायरेटेड जो है मूवीज देखा करते थे स्पाइडरमैन की, एंड कॉलेज गए स्कूल कंपटीशन में, कॉलेज कंपटीशन में जो है गाना गाया, एंड वहाँ इनकी आवाज़ ने ऐसे जादू कर दिया, तब इन्होंने साथ में म्यूजिक बनाना शुरू करा, एंड उसके बाद इनकी राहें अलग अलग तब हो गई जब इन्हें काम के सिलसिले में वो जो टाउन था वो छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर कुछ साल बाद ही वापस आए एक साथ और इन्होंने यूट्यूब पे जो है गाना बनाया एंड वो डाला, एंड वो एक मेजर हिट हो गया। फिर क्या था यार, फिर इनकी सक्सेस की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ गई। मैं बात कर रही हूँ बंजारे डुओ की, जिन्होंने हमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग गाने दिए हैं, एंड अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के का एक प्रमोशनल जो गाना था बरसात, वो भी इनका ही गाना है। इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में, फिलहाल इनकी कहानी से इंस्पायर होते हुए एक अमेजिंग गाना जो है वो एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: With Nesto Hypermarket, now opening on 19th August, Old Passport Office, Karafa. Nesto, all that you need.

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

मन ने सांब सांब रखे, इसके आगे मुझे लिरिक्स नहीं आते हैं लेकिन गाना बहुत अच्छा लगता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसर शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइव मस्त, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं। अब देखिए, हम हरियाणवी म्यूजिक डुओ अनुज और सुमित की बात कर रहे हैं, जिनका अब यू नो बंजारे जिनके डुओ का नाम है, जिनके म्यूजिक ग्रुप का नाम है। एंड इन्होंने ना COVID-19 के टाइम पे जो है शुरुआत करी थी म्यूजिक बनाने की। एंड बहुत सारे अलग अलग इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि इन्होंने अपने इस डुओ का नाम बंजारे क्यों रखा है। उन्होंने ये नाम इसीलिए चुना था क्योंकि उनका ये मानना है कि स्टोरी टेलिंग और ट्रैवलिंग जो है वो एक स्पिरिट होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट करता है उनका गाना। एंड बंजारों की तरह अलग अलग जगह घूम के अलग अलग टाइप का म्यूजिक जो है ये क्रिएट करना चाहते हैं। एंड म्यूजिक क्रिएट करते करते इन्होंने ना हिस्ट्री क्रिएट कर दिया यार। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बाल जो है वो कर्ली तो नहीं है लेकिन स्ट्रेट भी नहीं हो पा रहे हैं और ये तो वेवी से भी ज्यादा कर्ली है, तो आपके बालों में फ्रिज आ गया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कसो संशो, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ जहाँ पर हम आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं। अब देखिए यार, आजकल क्या होता है ना कि बालों में फ्रिज काफी आ जाता है एंड बाल काफी फ्लफी फ्लफी से लगने लग जाते हैं, हेल्दी वे में नहीं अनहेल्दी वे में, काफी फ्लाई अवेज भी हमें बालों में दिखते हैं एंड पूरे टाइम बाल जो है थोड़े से अनटाइडी से लगते रहते हैं कि यार ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने काफी मतलब दिनों से हेयर ब्रश ही नहीं किया है, मैंने कोम भी नहीं किया है। लेकिन इसका जो एक मेन रीजन है वो है कतर की ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमन हेयर जो है वो एक्सपैंड करते हैं और अपनी लेंथ जो है वो चेंज कर लेते हैं 2.5% तक जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है। इसी वजह से आपके जो बाल है वो फ्रिजी हो जाते हैं। देखिए मैं तो पहले ही कह रही थी कि आपके बालों में खराबी नहीं, ये तो बस मौसम है जो वक्त के साथ इसे बदलता रहता है, तो आपके चेंज जो है आपके बालों में आने लग जाता है। सो परेशान होने की कोई बात नहीं, ह्यूमिडिटी जो है वो ठीक हो जाएगी तो आपके बाल भी ठीक हो जाएंगे। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास टाइम चेक
2: ब्रॉट टू यू बाय
1: दानादल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर।
3: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यू बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

भाई साहब देखो, पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जेंजी होना ना एक शर्म की बात है। ऐसा लगता था कि यार ये किस जनरेशन में पैदा हो गई हूँ मैं, कितना एम्बैरेसमेंट जो है वो झेलना पड़ता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, अगर मैं ये बताऊँ आपको कि काफ़ी सारे जेंजीज जो है वो अलग अलग टाइप के जो काम है वो करते रहते हैं एंड काफ़ी बार इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इनके मजाक भी उड़ाए जाते हैं, लेकिन एक काम अभी एक जेंजी ने किया है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वाह वाही जो है वो बटोर रहा है। मिलेनियल्स थक जाते हैं अपने मैनेजर्स को जवाब देते देते, उनको जस्टिफाई करते हुए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेंजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक मैनेजर ने जो है ये मेल डाला कि अब से ये रूल है कि विद इन लाइक 15 मिनट्स 10 मिनट्स आपके पास अगर मेल आया है तो

0: उसका रिस्पांस करना इंपॉर्टेंट है, उसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है. सो एक जेंजी ने क्या किया, अब जब भी मेल आता है वो विद इन 5 मिनट्स हर मेल का जवाब एड्रेस्ड लिखकर, वर्ड एड्रेस्ड लिखकर कर देता है, चाहे मेल कुछ भी हो. वाओ गाइस, वाओ नाइस. आप बताइए, आप जेंजी है या मिलेनियल, और क्या आप में ये करने की हिम्मत है? 3311063 पर फिलहाल एक अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओपन दैट
1: रेडियो ऑलिव पर. आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: Nesto Hypermarket, now opening on 19th August, Old Pass.

यार मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं कोई भी सीरीज देखने में ना लेट हो जाती हूँ, एंड ऐसे ही मेरे साथ हुआ था मुसाफिर कैफे में भी। मेरे सारे दोस्तों ने देख ली थी पहले ही दिन एंड मैं काफी लेट हो गई थी। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए मुसाफिर कैफे मैंने अभी बस कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट करी थी एंड सारे जो मेरे दोस्त हैं वो पहले दिन देख चुके थे और उनको ऐसा कुलबुली सी मच रही थी कि यार कशिश क्यों आधे में छोड़ दिया इन्होंने इस शो को, क्यों पूरी कहानी नहीं करी, एंड इन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा अब। लेकिन मुझे जो है अभी मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये खबर आ गई मुसाफिर कैफे का सीजन 2 आने वाला है। यानी मैंने थोड़ी सी देरी दिखाई लेकिन अब जो है मेरा वेटिंग पीरियड जो है वो कम हो गया है सीजन 2 के लिए। तो आप बताइए मुझे कि क्या आप एक्साइटेड हैं मुसाफिर कैफे की सीजन 2 के लिए? आपने फर्स्ट जो सीजन है वो देखा या नहीं देखा? वैसे अमेजिंग वाले गाने मुसाफिर कैफे के आप सुन सकते हैं रेडियो ऑलिव पे, सो स्टे ट्यून्ड रहो। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी ओबिंदास।

0: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: दुनिया में वो लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है जो ये कहते हैं कि यार आपको जो है ये करना चाहिए तो आपकी लाइफ पीसफुल होगी, आपको ये करना चाहिए तो आपकी लाइफ लंबी होगी। इन्हें खुद नहीं पता है इनकी लाइफ का क्या होने वाला है। क्या होता है कि हम जब भी लोगों के पास जाते हैं तो वो हमें ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि यार ये अच्छे काम करो तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। लेकिन एक 106 साल की यानी 106 ईयर्स की ग्रैंड मा से, दादी जी से जब पूछा गया कि यार आपकी इस लंबी उम्र का राज क्या है, उन्होंने कहा कि यार भाई मैं तो बहुत चॉकलेट खाती हूँ, मैं तो बहुत यू नो इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट, बस यही है मेरी इस लंबी उम्र का एक यू नो एक पीछे का एक सीक्रेट। कितनी इजीली इन्होंने बात कर दी यार कि भाई खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए, वरना लाइफ में क्या बोल देते हैं, योगा करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, ऑफकोर्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक बात बताओ कि मैं अगर आपसे सिर्फ ऐसे ही पूछ रही हूँ तो आप इतना ज्ञान दोगे क्या मुझे? नहीं ना यार, कभी कभी ज्ञान नहीं भी देना होता है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Song of the Hour. Ye Gaana.

0: यार देखो मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिन्होंने मतलब जैसे ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हुई थी ना वैसे ही देख ली थी, एंड उसके बाद हमें काफी सारे मीम से पता चला कि ओ ये चीज का रेफरेंस ये है, ये चीज का रेफरेंस ये है, एंड खुद को बहुत रोका लोगों को ना स्पॉयलर्स देने से, लेकिन हो नहीं पाया, काफी सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए मुझसे। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसर्स एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। अब देखो यार, ब्रांड न्यू डे जो मूवी थी स्पाइडरमैन वाली, इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिसके लोग मीम्स बना रहे हैं एंड लोगों को काफी पसंद भी आई है, लेकिन इस मूवी में एक जगह जो है टॉम हॉलैंड ने विग यूज किया है एक फ्लैशबैक सीन के लिए, एंड वो विग जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है एंड लिटरली लोग उसके लिए बोली लगा रहे हैं कि अरे हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। मतलब स्पाइडरमैन का मास्क नहीं, स्पाइडरमैन का सूट नहीं या और कोई चीज नहीं, विग, टॉम हॉलैंड का विग। और लोगों में तो ये डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या टॉम हॉलैंड हर हर सीन के लिए विग पहनता है, हर सिचुएशन के लिए विग पहनता है। फिर जो उनके स्टाइलिस्ट हैं उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ा कि नहीं, सिर्फ एक फ्लैशबैक सीन के लिए उसने विग पहनी थी, बाकी वो नहीं पहनता है विग। मैं वो आपकी कशिश मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रही और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: सर क्या पर ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

देखो हर रोज मैं फैशन वाले सेगमेंट पे किसी एक फैशन गारमेंट की बात करती हूँ या कलर कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है उसकी बात करती हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे एक कलर के बारे में जिससे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो है वो जुड़े हुए हैं। बात कर रही हूँ मैं पिंक कलर की। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब कलर पिंक जो है वो अक्सर लड़कियों से एसोसिएट किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारी लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है। एंड पर ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरुआत में पिंक कलर जो था वो लड़के ज़्यादा पहनते थे बिकॉज वो रेड की फैमिली का है एंड रेड स्टैंड्स फॉर सुप्रीम पावर एंड ऑल दैट। लेकिन धीरे धीरे इसे फेमिनिन एनर्जी से जो है वो जोड़ा जाने लग गया, इसलिए पिंक जो है वो ज़्यादातर ऐसे फीमेल कलर की तरह जो है पहचाना जाने लगा। अब देखो यार, ऐसा अक्सर होता है कि आपको जो है पिंक कलर शुरू में बहुत अच्छा लगता है, फिर आपका इंटरेस्ट चला जाता है, एंड फिर आपको पिंक कलर अगर अच्छा लग रहा है इसका मतलब आपको आपकी लाइफ में वापस वो केयर एंड सिक्योरिटी जो है वो शायद मिल गई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक उम्र के बाद पिंक वापस अच्छा लगने लग जाता है मतलब आप दिल से खुश हैं। अब देखो मैं तो दिल से खुश हूँ, मुझे पिंक वापस अच्छा लगने लग गया है, मेरा फ़ोन कवर, मेरी सिपर वाली बॉटल सब पिंक कलर का है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपको क्या लगता है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपनिंग ऑन 19th August, ओल्ड

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

तो जी आपको चाचा बाय बाय करके यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। दिल तो नहीं चाह रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा, कल वापस भी तो आना है। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑल पर और आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे लाइफ मस्त है शो। एंड अब देखिए जाते जाते बस आपको एक ही बात मैं कहना चाहूंगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए एंड मुझे याद करते रहिए। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप हम सभी आरजेस को जो है फॉलो कर सकते हैं, बातचीत जो है वहां पर भी कर सकते हैं। एंड 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर भी बातचीत जारी रख सकते हैं। फिलहाल एक अमेजिंग वाले गाने के साथ आपको मैं चाचा बाय बाय बोल के जा रही हूं, तो मुझे याद करते रहना और मेरे साथ कहते रहना जियो बिंदास, टेक केयर। रेडियो

0: खाना खत्म पैसा हजाम।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
2: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ओह नो, फिर से स्कूल।
0: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
5: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
0: रिफ्रेशमेंट पार्टनर अल वाजबा डेयरी एंड अल शमाल प्योर ड्रिंकिंग वाटर, distributed by Gulf Center Holding.

0: नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
2: रेडियो ऑलिव नंबर वन
3: ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Olive Music Marathon. एक घंटा non-stop back to back गाने।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को। तो कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, बांध रखी है तो कस के बांध लीजिए। यहां पे हम गाने सुनाने वाले हैं, गुनगुनाने वाले हैं, किससे खबरें कहानियां शेयर करने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने वाले हैं। तो भाई अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: बावरा समन भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात करेंगे गुड वाइब्स के बारे में। जी हाँ, वाइब्स अगर अच्छी हैं तो बात बढ़िया रहेगी, वाइब्स अच्छी नहीं है तो फिर बात में उतना मजा नहीं आएगा। देखिए, वाइब्स के बारे में जेंजीज बहुत बात करते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, फ्रेंडशिप सर्कल में हो, कहीं पे भी हो। अगर वाइब अगर अच्छी नहीं आ रही तो फिर वो ना फीलिंग नहीं आती, हमें मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता जीवन में। इसलिए जो इंसान आपके साथ है या फिर जिस भी कंपनी में आप हो, फ्रेंड्स की कंपनी हो सकती है, कलीग्स का हो सकता है, कहीं पे भी आप हो, अगर वाइब गलत है तो वहां पे ज्यादा वक्त मत गुजारिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। और एक इंसान, एक जगह, एक चीज अगर आपको बहुत ही बढ़िया वाइब्स देती है तो बिल्कुल रहिए भाई, रिचार्ज हो जाएंगे आप। सिमिलरली ऑलिव रिचार्ज सुनिए, रिचार्ज हो जाइए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है नेस्टो हाइपरमार्केट खुलने वाला है ऑल ओवर वर्ल्ड। उनका 52nd आउटलेट है, मगर कतर का सबसे पहला आउटलेट है जो ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस घराफा में खुलने वाला है, और बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि तनिषा वहां पे कल जा चुकी थी, वहां पे देख के आ चुकी थी, तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस जो है उसने शेयर किया मेरे साथ। तो मैं भी यही बोलूंगा आपको कि आप जरूर जाइएगा नेस्टो हाइपरमार्केट, विजिट कीजिएगा, शॉप कीजिएगा, एंड भाई इनॉग्रल टाइम है तो ऑफर्स भी बढ़िया मिलेंगे आपको। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
2: ऑलिव रिचार्ज.
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो मैं ऐसे ही बैठ के इंटरनेट पे कुछ देख रहा था और मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा। तो कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज से एंग्जाइटी है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग है या फिर कोई भी चीज आपको एंग्जाइटी है, तो ट्राई टू डू इट फॉर फन। मतलब उसको एक इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए और एक फन तरीके से कि भाग करने में मजा आ रहा है करके इस एक माइंडसेट के साथ करने की कोशिश कीजिए। इट इज इजियर सेड देन डन, मैं जानता हूं। और तो उसका एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया था, क्योंकि जब हम किसी चीज के साथ इंपॉर्टेंस एसोसिएट कर देते हैं तो धीरे धीरे एंग्शियस होना शुरू हो जाते हैं हम और एंग्जाइटी जो है बढ़ने लग जाती है। तो जितना हम उस चीज को अनइम्पॉर्टेंट या फिर मोर फन बनाएंगे उतना हमारे लिए वो करना आसान होगा। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर डिस्क्लेमर भी देते हैं कि देखिए अगर आप एंग्शियस इंसान हो, आपको एंग्जाइटी आती रहती है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आप एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the heart

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और आज है फोटोग्राफी डे। और देखिए, फोटोग्राफी डे के दिन बहुत सारी चीजें जो हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, मगर मेरे मन में एकदम से एक चीज आ रही है कि यार आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों की फोटो खींचने की कोशिश तो की होगी, है ना। अब जरूरी नहीं है हम में से हर कोई काफी बढ़िया फोटोग्राफर है, मगर कभी कभी हम मेमोरीज को कैप्चर करने की कोशिश जरूर करते हैं, कभी कभी हम इवेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो बस जो हमें मन करता है या फिर जिसे देख के हमें फोटो खींचने का मन करता है, हम फोटो खींचते जरूर है। स्पेशली स्मार्टफोन के आने के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है फोटोग्राफी में आने लग गए, क्योंकि वो एक्सेसिबल हो गया सबके लिए। पहले अगर आपको फोटोग्राफी करनी थी तो कैमरा खरीदना पड़ता था जो कॉस्टली होता था, मगर अभी स्मार्टफोन के आने के बाद अच्छे अच्छे कैमरा जो है फोन में आने लगे, तो हर कोई जो है फोटोग्राफी में बहुत ही खुशी के साथ जो है आ रहा है और मोमेंट्स कैप्चर कर पा रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने जो है फोटोग्राफी को बहुत ही अवेलेबल और एक्सेसिबल बना दिया लोगों के लिए। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अभी तक की जिंदगी में एक ऐसी फोटो जो आपने खींची जो आपको बहुत पसंद है, अगर है तो मुझे भेजिए 3311063 पर और उसके बारे में बताइए। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के वेबसाइट में olive.qa, और वहां पे बैक टू स्कूल बैश का बैनर दिखेगा, क्लिक कीजिए, फिल कीजिए और अपने बच्चों को एक मौका दीजिए स्कूल खुलने से पहले, बस्ता बांधने से पहले, एक बहुत ही बढ़िया इवनिंग जहां पे एंजॉयमेंट होगा, फन होगा, एंटरटेनिंग गेम्स होंगे, काफी थ्रिलिंग एक एक्सपीरियंस होगा। और इसीलिए जैसे कि मैंने बताया, सीधा जाइए आप रेडियो ऑलिव के वेबसाइट पे और उसके बाद आप सीधा वो बैनर है उस पर क्लिक कीजिए, डिटेल्स फिल कीजिए और मौका पाइए हिस्सा बनने का बैक टू स्कूल बैच का जो होने वाला है 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में। और यही बात याद दिलाते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
4: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
1: रिफ्रेशमेंट पार्टनर अल वाजबा डेयरी एंड अल शमाल प्योर ड्रिंकिंग वाटर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गल्फ सेंटर होल्डिंग।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम जानते हैं कि आज है फोटोग्राफी डे। और फोटोग्राफी हम करते क्यों हैं? मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, है ना, ताकि कभी कभी बहुत साल बाद बैठ के हम देखें कि अरे वाह, ये सब किया था हमने, या फिर इस टाइम पे हम यहाँ गए थे, ये मेमोरीज हमने बनाई हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, अगर एक मोमेंट आपके लाइफ का जिसकी आपने फोटो खींच के रखी है, जो आप रिलीव करना चाहोगे या फिर वापस जाना चाहोगे, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि आपने उस मोमेंट का जो है फोटो खींच के नहीं रखा होगा, या फिर आपके पास उसका कोई फोटोग्राफ नहीं होगा, बट आपकी मेमोरी में वो है, तो ऐसा कौन सा मेमोरेबल मोमेंट है जो आप रिलीव करना चाहोगे, फिर से एक और बार एक्सपीरियंस करना चाहोगे, बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और मैंने ना गूगल दीदी से एक सवाल पूछा कि आज के जमाने में सबसे अंडररेटेड स्किल कौन सा है, और गूगल दीदी ने मुझे जवाब दिया, बोला कि द मोस्ट अंडररेटेड स्किल टुडे इज क्लियर आर्टिकुलेशन एंड सिंपल कम्युनिकेशन। जी हाँ, आजकल के जमाने में काफी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, ऑटोमेटेड टूल्स हैं, और क्या चीज है, क्या बात है, मुद्दा क्या है, उसको बहुत ही साफ, सटीक और सिंपल तरीके से जो बता सकता है वो भाई बहुत रेयर है आजकल। और ये क्यों मैटर करता है? पहली बात तो नॉइस रिडक्शन, अनट्रेंड की बातें नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें जो हैं साइड करके पॉइंट की जो बात होती है, जो काम की बात होती है, उसके बारे में कोई बात कर पाए तो बहुत बढ़िया रहता है। उसके साथ साथ आजकल के ज़माने में AI भी हम यूज़ करते हैं, तो AI को भी काफ़ी सटीक तरीके से एक प्रॉम्प्ट देना जो है एक बहुत बड़ा आर्ट बन चुका है। और जो बाकी अंडररेटेड स्किल्स हैं जिनके बारे में गूगल दीदी ने बताया, वो है डीप फोकस, एक्टिव लिसनिंग, क्यूरियोसिटी एंड टिंकरिंग। ये भाई एक्चुअली बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि अब मैं जब सोचता हूँ तो बहुत कम लोग हैं जो क्यूरियस हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको चीज़ों के बारे में जानने की एक जिज्ञासा होती है ना, वो नहीं है आजकल, उतनी नहीं है जितनी पहली थी। और ऑब्वियसली रिसोर्सेज बहुत सारे हैं तो चीज़ें ईजिली अवेलेबल भी हो जाती हैं, तो वो अलग बात है। बट हाँ, ये बात मैंने आपको बताई, बताइए आप इस बात से कितने ज़्यादा सहमत हैं, और आपको लगता है कि यार और भी कोई चीज़ है जो काफ़ी अंडररेटेड है आजकल के ज़माने में, तो बेझिझक मैसेज कीजिए 3311063 पर। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे अगर आप अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही बढ़िया इवनिंग सेलिब्रेट करना चाहते हैं स्कूल खुलने से पहले, तो सीधे जाइए रेडियो ऑलिव की वेबसाइट में जो है olive.qa, वहां पे बैक टू स्कूल बैश का एक बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और मौका पाइए हिस्सा बनने का एक ऐसी शाम का जहां पे बहुत फन होगा, गेम्स होंगे, मस्ती होगी। स्कूल में जाने से पहले, बस्ता बनाने से पहले बच्चे बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिल खोल के एंजॉय कर पाएंगे जो होने वाला है 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में। और यही बात बताते हो हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आप अपना फोन उठाइए, ठीक है? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, मगर इसको याद रखिएगा। आप फोन उठाइए, फोन में ऐप खोलिए इंस्टाग्राम का और सर्च कीजिए रेडियो ऑलिव डॉट क्यू ए, और वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो भाई फॉलो कीजिए, और फॉलो कर रखा है तो हमारे कंटेंट के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए। हमें सुनते हुए आप वीडियो रिकॉर्ड करके स्टोरी डाल सकते हैं, टैग कीजिए हमें, हम आपकी स्टोरी को रीशेयर भी करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट जो हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो आप जुड़े रहिए वहाँ पे हमारे साथ ताकि आपके पास मौका बने गिफ्ट्स जीतने का। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

तो भाई धीरे धीरे गुड बाय टाटा करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, 3 घंटे खत्म होने वाले हैं, मेरा टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है। मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, फिर मिलेंगे हम कल दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

राजा देखो वीकेंड आ गया है ऑलमोस्ट, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि अगर आज आपका पूरा दिन ऐसे काम वाम में बीत गया और आप इंतजार करो यार प्लीज वीकेंड को लेके आओ, आ ले आएंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। और बताओ क्या हाल है आपके, कैसा रहा आपका आज का दिन। 3311063 पर आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस मुझे भेज दो, इंतजार कर रही हूँ अपनी छोटी छोटी आंखें बिछा के।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ.
3: Hi everyone, this is Benny Deol here.
4: Benny Deol here.
3: Olive Radio 106.3.
4: Jio Bindas.
3: Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Radio Olive, I'm the number one.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: बे मैच हुआ प्रोफाइल, बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: आई वाज टोटली वर्थ इट।
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: हाँ
1: प्लीज बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं।
2: आगे जाके गा के

इश्क है, बहुत सारा इश्क नहीं यार नींद भाग जाती है दोस्तों, यही तो करना होता है आपको, अपने प्यार में डुबोना होता है। आशिकू दीवाना हूँ तेरे लिए, कुछ भी कर जाऊँ।

0: बिल्ली और कुत्ते में से अगर चॉइस करना हो तो मेरे को कुत्ता बहुत पसंद है, मैं उसको ही पेट करना चाहूंगी, मैं उसी को अपने घर में रखना चाहूंगी। लेकिन कुत्ते अगली कैसे हो सकते हैं यार, ये इस कॉन्टेस्ट ने जो है वो दिखा दिया, वर्ल्ड्स अगलीस्ट डॉग कॉन्टेस्ट। जी हाँ, ऐसा भी होता है, ये मुझे नहीं पता, ये 50 ईयर है इसका, ये मतलब ये हो रहा है कॉन्टेस्ट। सो इसके बारे में मुझे आज पता लगा। और जिस कुत्ते के मालिक ने जीता है, मैंने उसकी फोटो भी देखी है, कुत्ते की फोटो देखी, यार क्यूट है यार, बेचारे की जीभ बाहर है, अगली तो नहीं है यार, कुत्ते तो क्यूट ही होते हैं। बट यस, इसने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया और इसके मालिक को ऑलमोस्ट 5 लाख जो है वो अब मिले हैं अपने इस कुत्ते को पार्टिसिपेट करवाने के लिए, जहां पर उसको मतलब सबसे ज्यादा अगली बोला गया। यार नहीं यार, क्यूट है यार, पढ़ो, ऐसे भी कॉन्टेस्ट होते हैं, वो मेरे को नहीं पता था। सिमरन गौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

ना YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं YouTube के लिए, तो एक रूल जो चेंज हो रहा है 24th of August से, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मैं ये चीज सुनियो कि हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े ना।

स्टोरीज पसंद है एक नंबर, और आपको पसंद है यूट्यूब की वीडियोस। अगर आपका चैनल है और आप उस पे वीडियो जो है अपलोड करते हैं, हर कोई चाहता है लाइक व्यू कमेंट एंड शेयर। सो 24th of August यूट्यूब जो है वो अपडेट कर रहा है ये अपने नए सिस्टम के रूल, जो कि क्या होता है कि जैसे ही वीडियो आपकी स्टार्ट, जैसे किसी ने मतलब आपकी वीडियो पे क्लिक किया और देखना स्टार्ट किया, साथ के साथ वो व्यू जो है वो उसका काउंट होना चाहिए। पहले मिनिमम, पहले क्या था कि मिनिमम वॉच की रिक्वायरमेंट थी, कि पहले मिनिमम टाइम के लिए अगर कोई वॉच करता है तभी वो व्यू जो था वो काउंट होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा कि द मिनट आपने क्लिक किया और वीडियो स्टार्ट हुई वो व्यू जो है वो काउंट होने का। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं रहेगा कि अगर आपने इतने सेकंड या इतने मिनट देखा तो व्यू काउंट होने वाला, ऐसा नहीं है सीन।

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: बेबी को बेस पसंद है
1: यार। ये भी टाइम था यार सलमान खान का, जब बहुत ही बढ़िया वाली फिल्म्स आ रही थी और बढ़िया लग रहे थे यार। 5:49 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है, सिमरन कौर आपके साथ है, लेकिन टाइम एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी आप जब खाना ऑर्डर करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया खाना आ जाता है, कभी कभी जितना आप इतना एक्सपेक्ट करते हो और खाना आता नहीं। मेरे साथ अब भी कभी थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ है कि मैंने बड़ा खुश होकर कहीं से कुछ ऑर्डर किया था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आई एम लाइक अजीब सा हो गया था। खैर कोई बात नहीं है, ये भी होता है, कभी आपके गुड डेज होते हैं, कभी आपके बैड डेज होते हैं, लेकिन मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ इन सारी चीज़ों को। मैं लाइफ में खुश रहती हूँ और आप भी खुश रहिए, और आपके बच्चों को भी हम खुश रखने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बैक टू स्कूल बैच जो है वो लेकर आ चुके हैं आपके बच्चों के लिए, जहाँ पर आपको उनके लिए क्या करना है, फटाफट से जाके olive.qa, जी हाँ olive.qua पे जाके बैक टू स्कूल हैगा, वहां पर उत्थे तुसी जाके फॉर्म फिल कर दो एंड रजिस्टर हो जाएगा इस तरीके से। फिर तैयार हो जाइए अबू सिद्रा मॉल में इसकी सेलिब्रेशन के लिए, बैक टू स्कूल बैश के लिए, जो कि 27 अगस्त को होने वाला है दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे तक। क्रेजी गेम्स खेलने वाले, मजा आने वाला है आपको।
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर बी रेडी टू

हमेशा कुछ भी दिख जाए वो क्लिक करने की आदत है, मेमोरीज को यू नो कैप्चर करने की आदत है। बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि जस्ट बी इन द मोमेंट, फोटोज मत क्लिक करो। भाई यही चीजें हैं जो कि आप बाद में बैठ के, इंसान नहीं रहते हैं कभी कभी, वो रिश्ते नहीं रहते हैं, वो पल नहीं मिलते हैं जो कैप्चर हो जाते हैं, जिनको सोच के आप कभी कभी जिंदगी बिता देते हो, कभी कभी आप हंस देते हो, मुस्कुरा देते हो। सो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हम सब के अंदर एक कोई ना कोई फोटोग्राफर जो है वो छुपा होता है। तो आपकी फेवरेट वाली फोटो जो कि आपको प्राउड होता है कि भाई ये फोटो मैंने ली है क्या, सो वो वाली फोटो आप भेजिए मुझे 3311063 पर, और रेडियो ऑलिव को भी टैग करिएगा अपनी उस फोटो के साथ, सो फिर हम उसको ऐड टू स्टोरी जो है वो करेंगे। ठीक है, ये काम कर लीजिएगा। एंड मौसम क्या काम कर रहा है, चलो चेक करते हैं। मौसम ज्यादा अच्छे काम नहीं है मौसम के, टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, फील्स लाइक 48 डिग्री सेल्सियस, एक्सेसिव हीट है यार आज। विंड जो है 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी 40% है, सो बुरे हाल है दोस्तों।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: हाय गाइस, दिस इज अबार शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

मान जाते हैं यार लोग। जो लोग गुस्से से रूठते हैं वो नहीं मानते, उनके लिए थोड़ा

0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਮ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਲਗੇ ਔਰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਮੇ ਬਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਅਰੇ ਔਰ ਆਪ ਖਾਣਾ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੋ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਵਾਟ ਅ ਵਾਇਰਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਵਾਟ ਅ ਵਾਇਰਲ ये बात है।
0: सो वायरल में मैं आपको एक ऐसे केक के बारे में बताने वाली हूँ जिसको मुझे देख के ऐसे हो रहा था। तो इस केक का नाम है बुलू बुलू केक। जी हाँ, आई होप मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये बुलू बुलू केक है। इसका जो माय गॉड में फोटो देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसमें आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगी, कुकीज एंड क्रीम्स एंड ऑल। सो इस केक की खास बात यह है कि इस केक के ऊपर ऐसे लगता है कि किसी ने मुट्ठी भर के बाल डाल दिए हैं। एग्जैक्टली मुट्ठी भर के बाल डाल दिए और लोग उसको खा रहे हैं। एक्चुअली ये बाल नहीं है, ये एडेबल है, वो खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से क्रिएट किया गया। और ये केक जो है वो वायरल केक अभी मलेशिया में भी आ गया। तो वो वाला वीडियो जो मैंने देखा है, लाइक लोग कैसे खा रहे हैं, चाहे वो चीज़ नहीं है लेकिन आप वो कैसे खा रहे हो और ये कैसे केक वायरल भी हो रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप ये केक खा पाएंगे, ऐसा बालों वाला केक, जो कि वो बाल आपकी बॉडी के लिए खराब नहीं है, वो केक जैसे है, वो एडिबल है, वो खाने वाली चीज ही है, लेकिन वो दिख बालों जैसे रहे हैं, बालों से भरा हुआ केक कौन खाएगा यार।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ.
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

जॉन लेजेंड जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं इस 10 सितंबर को QNCC में। मैंने तो एक बार देखा हुआ है यार, बहुत मजेदार उनका कॉन्सर्ट था। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जस्ट रिमाइंडिंग यू कि आप अपनी टिकट्स वगैरह बुक कर लीजिए अगर आपको जाना है तो। लेकिन उससे पहले अटेंशन सारी बच्चों को दी जाएगी क्योंकि उनका स्कूल ऑन होने वाला है, छुट्टियां ऑफ होने वाली है। लेकिन उससे पहले बैक टू स्कूल बैच जो है हम करने वाले हैं आपके बच्चों के लिए अबू सिद्रा मॉल में इस 27 अगस्त को दोपहर 3 से लेके शाम के 7 बजे तक। तो अपने बच्चों को कर लीजिए तैयार। और तैयारी किस तरह से होगी, olive.qa पे जाकर बैक टू स्कूल का फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, कभी भी बंद हो सकता है मामला, फिर आपके बच्चे रोते रहेंगे तो हम नहीं चुप करा पाएंगे क्योंकि आपने अपना काम टाइम पे नहीं किया है। तो क्विकली जाके आप रजिस्टर करवा लीजिए बैक टू स्कूल बैच के लिए आप अपने बच्चों को, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम आपको मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 तारीख को।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सत्रियाकाल सिमरन कौर है तोडे नाल और आज हम बात करते हैं एक ऐसे वर्ड के बारे में आज बताएंगे जो कि सुनने में कुछ और ही लग रहा है। थ्रोइंग शेड, थ्रोइंग शेड मतलब उसका मतलब आपको क्या लग रहा है, लेकिन ये जो लग रहा है आपको इसका मतलब ये नहीं है। सो जेंजी स्लैंग जो है, जेंजी लिंगो जो है, इस थ्रोइंग शेड का मतलब होता है जब आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बात कर रहे हो, कंटिन्यूसली उसके बारे में नेगेटिव ही बोली जा रहा है, तो उसको बोलते हो लाइक व्हाई आर यू थ्रोइंग शेड। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो यूज कर लेते हो। 6:51 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़

अगले घंटे का पहला गाना भाई ऐसा है ना, बवाल गाना यार, स्पेशली गाना शाम के टाइम पे और भी खूबसूरत लगता है। मैं बताऊंगी नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, अगले घंटे का पहला गाना खुद ही सुन लेना।

0: बिल्कुल इसी गाने के बारे में बात कर रही थी। अब इस गाने को सुनते सुनते अगर आपको किसी की याद आए तो मुझे बता देना, और बता देना, बोल देना कि सिमरन गाना अच्छा है।
1: आए हो,
0: हाय।

तो मैं इस करते हो किसी के साथ शाम की चाय। आए हाय आए हाय यही तो होता है आपके फेवरेट लोगों के साथ कि ठहर जा तू किसी बहाने से। लेकिन आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो कौन सी फिल्म है? इस फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ। और इस फिल्म में, इस फिल्म का जो लीड रोल था गंगा वाला, वो माधुरी दीक्षित के लिए लिखा गया था, लेकिन माधुरी दीक्षित को सुभाष घई के साथ कुछ प्रॉब्लम थी उनकी लास्ट फिल्म खलनायक एंड ऑल, सो उसकी वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। अब ये जो गाना है, ये दिल दीवाना, आपको इसके बारे में एक चीज बता दूंगी, अब नेक्स्ट टाइम जब आप इस गाने की वीडियो देखोगे हो सकता है कि मेरे बताने के बाद आप इसकी वीडियो देखो और नोटिस करो। सो ये जो गाना है, जब ये फिल्म का, ये गाने का शूट रखा गया था ये दिल दीवाना, तब शाहरुख खान की वाइफ गौरी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उनको दिल्ली निकलना था, तो सुभाष घई ने उनको अर्ली मॉर्निंग में बुला के उनके क्लोजअप वाले तीन चार शॉट जो है वो ले लिए। अब जो बाकी का गाना शूट हुआ है वो उनका बॉडी डबल है, यानी कि वो नकली शाहरुख खान है, असली शाहरुख खान है नहीं है। यस, ये बात यार मुझे भी नहीं पता थी। सो या, और उसके साथ सुभाष घई ने बोला कि जब उन्होंने ये फिल्म अनाउंस की थी कि ये फिल्म बनाने वाले, तो उन्होंने बोला कि ये परदेस फिल्म जो है ना वो बड़ी फिल्म नहीं है, कि लाइक जैसे मैंने सौदागर और खलनायक ऐसे फिल्में हैं, इतनी बड़ी फिल्म नहीं है, बहुत छोटे बजट की फिल्म है। सो जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तब उन्होंने बहुत ही बड़े वे से, बहुत ही ग्रैंड वे से इस फिल्म को प्रमोट किया और सबको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि इसका म्यूजिक भी कितना जबरदस्त हिट रहा था। और सुभाष घई इतने ज्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने नदीम श्रवण को 2 कार्स गिफ्ट करी थी इस फिल्म के म्यूजिक के लिए। सो या, और भी बहुत सारी बातें इस फिल्म के बारे में मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। सिमरन कौर आपके साथ, थ्री बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: आपके साथ इस गाने के चलते सबकी आशिकी जो है बाहर आ जाती है, दिल की खता भी क्या, दिल में मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ, मुझको फील पूरी आ जाती है यार। सो या इस यू नो फिल्म के बारे में बताऊं, परदेश फिल्म के बारे में, जूही चावला को वैसे कंसिडर किया गया था बट सुभाष घई के ऊपर महिमा चौधरी से इतने ज्यादा वो इम्प्रेस हो चुके थे, कहते हैं भाई ये रोल तो उसी को देना है। सुभाष घई ने इतना किया कि मतलब ऋतु से उसका नाम चेंज करके महिमा रख दिया, क्योंकि वो एम लेटर उनके लिए काफी ज्यादा लकी था, लाइक मीनाक्षी शिशाद्री, मनीषा कोइराला एंड माधुरी दीक्षित। फिर शाहरुख खान जो थे वो इस फिल्म से हैप्पी नहीं थे, कहते कि जितना रोल आप लोगों ने मुझे दिया है वो कुछ नहीं है, आपने मतलब सारा फोकस जो है वो महिमा चौधरी के ऊपर कर लिया, उसको पूरी फुटेज जो है वो मिल गई है, मैं तो एक एक्स्ट्रा सपोर्टिंग एक्टर की तरह इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने बोला है कि इन फ्यूचर मैं सुभाष घई के साथ कभी काम नहीं करूँगा। सो या इस फिल्म के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो कि मैं आपको और भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं भी सिर्फ यही थोड़ी बताती रहूँगी, आप लोगों के नाम भी लूँगी, इस घंटे नेम गेम खेलेंगे, रियलिटी चेक भी करेंगे और बढ़िया वाला म्यूजिक भी सुनाऊंगी। मारा मारा मैं चांद से बिछड़ा तारा, मैं दिल से इतना क्यों हारा, मैं ये तूने क्या किया, तूने जो भी किया है, लेकिन
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

मुझे नहीं पता यार। मैं सोनी हूँ, कितना हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। बाहर गर्मी

0: जिगर को ठंडा रखिए और खुद को खुश रखिए और बाकी लोगों को भी खुश रहने दीजिए।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि रात को रो के सोए होंगे, किसी की याद में किसी ने आपके साथ गलत कर दिया या फिर बिना खाना खाए सोए होंगे, है ना। सो मैं सिर्फ एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि बिना खाए सोना या रोके सोना कितना कितना ज़्यादा बुरा होता है यार। सो कभी भी किसी की लाइफ में ऐसा रीज़न मत बनिएगा कि कोई आपकी वजह से बिना खाना खाने सोए और रोके सोए, ठीक है। तो लाइफ में उतना हम्बल रहेगा, उतना काइंड रहेगा। हर कोई अपनी लाइफ में ना अलग अलग तरीके से डील कर रहा है बहुत सारी दिक्कतों को। बी काइंड, बस इतना बोलना चाहूंगी, ठीक है। अच्छे बच्चे बनो यार, आप लोग अच्छे हो, आई नो गुस्सा आता है, मैं मानती हूँ कंट्रोल नहीं होता है, बट हट जाओ जब गुस्सा आ रहा है ना, जब आपको पता लगा चीजें खराब हो रही हैं और हो सकती हैं गलत हो जाएंगी, फोन ही बंद कर दो अपना या फिर उस कॉन्वर्जेशन से निकल जाओ आप बाहर।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM।

हां जी स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और अब बिना देर लगाए आप लोगों के नाम लेती हूँ। मैं क्या जी सुनियो, फिर अब अपना अपना नाम मुझे बता दो। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मेरे सामने आएंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख दीजिए। चलिए क्विकली अब मैं आप लोगों के नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। सईद जी, रमन जी, थैंक यू सो मच, फिलिप जी, अदील जी, डेजी जी, हिमकुश जी, आजमा जी, यूसुफ जी, थैंक यू सो मच, हुजाइफा जी, थैंक यू सो मच, उषा जी, थैंक यू सो मच, हैदर जी, थैंक यू सो मच, जुनेद जी, थैंक यू सो मच, सईद, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, स्मिता, शेजू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कामरान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिजू जी, थैंक यू सो मच, मकसूद अली जी, उर्वशी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों नाम लिखो और कुछ नहीं लिखना है। देखिए ये हाय हेलो आप कर देते हो ना तो वो मुझे समझ नहीं लगता है यार, फिर ये नहीं करना है। ऋषि जी, थैंक यू सो मच, मकसूद अली, ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ। संजय जी, थैंक यू सो मच, सैफ जी, थैंक यू सो मच, अबरार जी, थैंक यू सो मच, शशिकांत जी, थैंक यू सो मच, विनायक जी, सुरीत जी, थैंक यू सो मच, विद्या जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हे सिमरन क्यों लिख रहे हो दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना। उत्सव जी, थैंक यू सो मच, नारायण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है, क्विकली नाम लिखिए 3311063 पर। एंड दैट्स इट फॉर ऑल, जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए हैं बेटा अब आप लिखो थैंक यू और अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना जो है वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इंजॉय करिए अगला गाना। ये

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.

0: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू शॉप।
2: Brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi, this is Air Aman. Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
5: Jio Bindas.
2: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: I'm in number one Radio Olive.
7: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: Zabardast evening make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: गाना है यार, सिमरन कौर के शो में ऐसे गाने चलते हैं। एक नंबर में जी सुनियो की दादी की हलचल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर तोड़े नाल। और अब टाइम आ चुका है कि हम खेले
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत
0: बिल्कुल एक चुटकी सॉन्ग में मैं आपको एक गाने की थोड़ा सा एक चुटकी सॉन्ग सुनाने वाली हूँ, तो आपने गेस करना है। तो आप अपने फोन का रिकॉर्डर भी ऑन रख सकते हैं, ठीक है। सो क्विकली मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत ही पॉपुलर गाना है, बताओ ये कौन सा गाना आपको लग रहा है। आप फटाफट से एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए जिसमें आप सिमरन कौर वाली एनर्जी लेके आइए, प्लीज लिखिएगा मत, ओके। हे सिमरन, और जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रेडियो कॉलम पीछे बंद होना चाहिए। हे सिमरन, अपना नाम बताइए, गाना गा के बताना है, गा के बता सकते हैं, बोल के बताना है, बोल के बता सकते हैं। भेज दीजिए 3311063 पर। एक बार वापस से सुना रही हूँ। चलो मैं इंतजार कर रही हूँ, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास।
2: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबूसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबूसिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबूसिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबूसिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
4: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
2: रिफ्रेशमेंट पार्टनर अल वाजबा डेयरी एंड अल शमाल प्योर ड्रिंकिंग वाटर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गल्फ सेंटर होल्डिंग।

0: ते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: यार केके की आवाज मजे आ जाते हैं यार, जब से मैंने इनकी आवाज बंटू देखी है ना यार, मतलब वो फील है यार। आप लोग देखो इस फिल्म को, एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो ना, मजे तब आते हैं यार। 8:36:15 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। सिमरन कौर आपके साथ है और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत
0: बिल्कुल एक चुटकी सॉन्ग, और एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको सुनाया था बिल्कुल, और आप लोगों के जवाब चलिए सुनते हैं।
3: है छोटा सा छोटी सी आशा।
0: सर आप अपना नाम तो बता देते यार।
4: ये वाला गाना है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा।
0: वाह,
4: या फिर वो तमिल वाला चिन्ह चिन्ह आशा।
0: यार आप मुझे तमिल वाला गाना मतलब ऐसे गा के भेजो यार, बहुत प्यारा गा रही हो आप।
5: Hey Simran, good
0: Hi,
5: evening.
0: Very good evening.
5: यार, and the song is, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा।
0: ब्यूटिफुल,
5: मस्ती भरे मन से जीने की आशा।
0: मस्ती भरे मन से।
5: और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, सो प्लीज विश हिम।
0: ओके,
5: मृदुल उसका नाम है।
0: मृदुल हैप्पी वाला बर्थडे। आपकी मम्मा ने बोला कि आपका आज हैप्पी वाला बर्थडे, मस्त एंजॉय करो, मस्त पार्टी करो यार, क्या कहना है एम का।
6: हाय सिमरन, आपने जो एक चुटकी सॉन्ग सुनाई,
0: हाँ जी,
6: वो है फिल्म रोजा से।
0: ओके,
6: दिल है छोटा सा
0: वाह
6: छोटी सी आशा।
0: जियो बिंदास दोस्त, आजी क्या बात है यार, आप सबने एकदम करेक्ट जो है वो पहचाना है। लेकिन यार बहुत ही खराब जोक मारूं कि दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, इतने सालों में आशा बड़ी नहीं हो गई हूँ। ठीक है यार, मत हंसो, बहुत ही बुरा था। और आवारा पंटू की बात कर रहे थे, वो गाना भी बस थोड़ी देर में आएगा, लेकिन इससे पहले मर्डर 2 से ये गाना।

0: खबर,
1: बाकी की खबरें कल दूंगी यार। यार ये गाना एवरग्रीन है यार, सोनू निगम की आवाज। और इसमें इस मंक्स वाला एक सीन आता है भाई साहब, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे जब मैं सीन वो देख रही थी। खैर बाकी का सीन कल सेट करेंगे, क्योंकि कल का सीन बना लीजिए, अकेली नहीं आने वाली हूँ, वीकेंड साथ में लेके आने वाली हूँ, तो कल थर्सडे पे अपन फन करने वाले हैं बहुत सारा। अभी के लिए ओवरथिंकिंग मत करिएगा, आराम से सो जाइए, लेकिन डूम स्क्रॉलिंग तो हर कोई करता है, वो मैं भी करती हूँ, वो मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ कि प्लीज मत करना। खैर अपना ध्यान रखिएगा एंड अगले दो घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करेगा। खाने में रोवाइश करते रहो, चेहरे पे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट। I just take care of yourself and love you so kilo.
2: Radio Olive Park. Fresh song of the hour. Yeah,

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. इमेजिन कीजिए आप सिर्फ 16 साल के हो, स्कूल की एज है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और सडनली आप एक प्लेन में बैठकर दूसरी कंट्री जा रहे हो क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन ऑन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेज. आज से दोहा में FIVB बॉयज अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हो चुका है जहां पर 24 कंट्री के यंग प्लेयर्स कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. सोचिए उनके लिए कतर सिर्फ एक टूर्नामेंट वेन्यू नहीं है, ये वो प्लेस होगा जहां शायद पहली बार उन्होंने इंटरनेशनल क्राउड देखा होगा, डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर्स मिले होंगे और अपने नाम के साथ अपने कंट्री का नाम सुना होगा. हम अक्सर सक्सेस को फाइनल रिजल्ट से मेजर करने लग जाते हैं, मेडल मिला या नहीं मिला, लेकिन 16 की एज में इतनी बड़ी स्टेज पर खड़े होना भी एक अचीवमेंट है. भाई व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, ट्रस्ट मी, मैं भी कुछ गेम्स खेला करती थी जिसमें से एक था वॉलीबॉल. और जब मैं कहीं बाहर खेलने के लिए जाती थी अपनी सिटी से या अपने स्टेट से तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. सो टैलेंट को ना स्टेज चाहिए लेकिन कॉन्फिडेंस को पहला चांस चाहिए. तो अगर आपको 16 की एज में दुनिया के सामने पहला कंट्री को रिप्रेजेंट करने का चांस मिले तो आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा नर्वस होते हैं, परफॉर्मेंस, क्राउड या एक्सपेक्टेशंस? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और हम इन सब का वेलकम करते हैं इन कतर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास. एंड यस, नंबर सेम 3311063.

एक टाइम था इंस्टाग्राम खोलते ही सबकी लाइफ परफेक्ट लगती थी. परफेक्ट ब्रेकफास्ट, स्किन, हॉलीडेज, कपल, परफेक्ट होम. और हम अपनी लाइफ देखकर सोचते थे कि मेरे घर में ये कुशन्स मैचिंग क्यों नहीं है, या फिर यार इनके कर्टन्स एंड कारपेट्स हमेशा मैच कैसे होते हैं. लेकिन अब इंटरेस्टिंग चेंज आ रहा है. पीपल आर मतलब इंक्रीजिंग रिस्पॉन्डिंग टू कॉन्टेंट दैट फील रील. मतलब मेसी रूम, ठीक है, बेड लाइटिंग, या फिर अनफिल्टर्ड जो लाफ होता है, या फिर नॉर्मल यू नो ट्यूसडे वेंसडे. क्योंकि समवेयर वी रियलाइज कि परफेक्ट लाइफ देखना एंटरटेनिंग हो सकता है, बट रियल लाइफ से कनेक्शन होता है. मे बी दैट्स व्हाई अ क्रिएटर सेइंग कि गाइस आज मेरा मूड भी खराब है. सो कैन समथिंग फील मोर रिलेटेबल देन समवन स्टैंडिंग इन अ परफेक्ट सनसेट एंड सेइंग लाइफ इज ब्यूटिफुल. सो आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर आपको पॉलिश्ड परफेक्शन पसंद है, या फिर थोड़ी सी असली इम्परफेक्ट लाइफ. बाय द वे, देखने में तो वो परफेक्ट लाइफ बहुत अच्छी लगती है, बट हम सब जानते हैं कि ये परफेक्शन जो है वो थोड़ी देर के लिए किसी एक कॉर्नर का परफेक्शन है. पूरा घर एक जैसा नहीं दिख सकता, ट्रस्ट मी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज.

0: ये है मिड नाइट लाउंज।
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

So, आजकल एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है. पहले हम बोलते थे मूवी देखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और वहीं हम 20 मिनट रील और माइक्रो ड्रामा बिंज कर लेते थे. स्टोरी टाइम, शॉर्ट टाइम, फिर फास्ट प्लॉट और एपिसोड खत्म. भाई यहाँ पर एक आया कि यार माइक्रो ड्रामाज होते हैं और शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, इस स्टोरी टेलिंग जो है ये अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट फॉर्मेट बनता जा रहा है. बट हेयर इज़ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या हमारी अटेंशन स्पैन जो है वो बदल गई है, या एंटरटेनमेंट ने बस हमारी बिजी लाइफ के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट बदल लिया है. मतलब कई बार ऐसा होता था कि पहले घंटों घंटों की मूवीज़ आती थी, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी स्टोरीज आने लग गई, फिर उसके बाद पॉडकास्ट आने लगे जो कि यू नो 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के होते थे, और फिर हमें लगा कि ये बेस्ट है. सो क्योंकि 2 घंटे फिल्म के लिए पूरा कमिटमेंट चाहिए, पर 10 मिनट की स्टोरी के लिए बस प्ले करा और प्रेस करना है. मे बी द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ नॉट नेसेसरी यू नो कि छोटी स्टोरीज हो, इट्स स्टोरीज दैट रिस्पेक्ट योर लिमिटेड टाइम. तो आप बताइए, आपको 10 मिनट में कंप्लीट स्टोरी चाहिए या फिर 2 घंटे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106.

0: ये है मिडनाइट लाउंज। ओ नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
2: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
0: रिफ्रेशमेंट पार्टनर अल वाजबा डेयरी एंड अल शमाल प्योर ड्रिंकिंग वाटर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गल्फ सेंटर होल्डिंग।

गुड इवनिंग। एक स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। इमेजिन कीजिए रात के 2 बजे हैं, ठीक है, आपका मूड टेरिबल है, आपको किसी से बात करनी है, ठीक है। ऑप्शन ए AI होगा, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, नो जजमेंट, 24/7 अवेलेबल। ऑप्शन 2 होगा योर बेस्ट फ्रेंड, मे बी वो रिप्लाई करे 20 मिनट के बाद, क्या हुआ कॉल कर, या फिर यू नो AI नोज व्हाट यू टाइप, ठीक है, बट योर फ्रेंड नोज हाउ यू साउंड व्हेन यू से आई एम फाइन बट यू आर एक्चुअली नॉट। दैट इज अ फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ AI, मतलब वो आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत बहुत सेकेंड्स में दे सकता है, बट ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्ड होने में, सालों लग जाते हैं समझने में। हिस्ट्री पता होती है, मेमोरी पता होती है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, साइलेंस होता है, समटाइम्स इवन अ सिंपल चल कॉफ़ी भी मिल ले, ये भी यू नो उनको पता होता है कि क्यों मिलना है। सो टेक्नोलॉजी में मेक कम्युनिकेशन फास्टर, बट मुझे लगता है कि ये जो फास्टर है ये ऑलवेज बेटर तो नहीं हो सकता। सो आप बताइए कि बैड डे पर इंस्टेंट AI आंसर चूज करते हो आप, या 20 मिनट वेट करके भी आप अपने एक फ्रेंड के रिप्लाई का वेट करते हो। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. आज एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं. किसी पुरानी मूवी का टाइटल बताइए और देखिए कितनी जल्दी उसका मैजिक, कैरेक्टर और म्यूजिक और अपनी लाइफ का एक फेज आपको याद आ जाएगा. दैट्स वाई ओल्ड फ्रेंचाइजीज कीप रिटर्निंग. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई मूवी टिकट खरीदना, वहाँ से लेके मूवी एक्सपीरियंस तक, वी आर बाइंग अ फीलिंग वी ऑलरेडी नो. ठीक है, एक नई फिल्म आपको क्यूरोसिटी देती है, पर एक पुरानी फेवरेट फिल्म आपको कम्फर्ट देती है. आपको एंडिंग पता होता है, डायलॉग पता होता है, और फिर भी आप देखते हो क्योंकि आपको पता है कि यार ये रीविजिटिंग जो है ये बहुत बढ़िया होने वाली है. सो यू आर रीविजिटिंग योर सेल्फ, द पर्सन यू वर व्हेन द फर्स्ट यू वॉच्ड इट. ठीक है, तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि भाई अपने कम्फर्ट में बैठ कर अपने पुराने मूवीज, पुराने गाने सुनने का भी एक अपना मजा है. बाय द वे, आज ऑलरेडी वेंसडे हो चुका है, कल वीकेंड वाली फील आ जाएगी. और अगर आपको एक मूवी को एग्जैक्टली वैसे ही एक्सपीरियंस करना हो जैसे फर्स्ट टाइम किया था, तो आप कौन सी मूवी चूज करोगे? 3311 1063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

सो एक टाइम था, अगर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम बनाना था तो मुंबई जाना ऑलमोस्ट कंपलसरी लगता था। ऑडिशन देने पड़ते थे, प्रोडक्शन हाउस होता था, स्टूडियो होता था, नेटवर्किंग होनी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन आज एक फ़ोन है, एक इंटरनेट है और आप अपने बेडरूम से दुनिया तक पहुंच सकते हो, अपने घर से, अपने हॉल से बैठ के कोई भी वीडियो बना सकते हो। और इंटरेस्टिंगली, रीजनल लैंग्वेज और स्मॉलर सिटी क्रिएटर्स भी डिजिटल स्पेस में अपनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि यार हमने कुछ किया क्यों नहीं। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। मतलब कॉन्टेंट का एड्रेस ना अब सिर्फ मुंबई और दिल्ली या कोई बड़ा शहर तो नहीं बचा है, टैलेंट का लोकेशन से रिलेशनशिप जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आप हिंदी में बोलिए, मलयालम में बोलिए, पंजाबी में बोलिए या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो, अगर स्टोरी असली है ऑडियंस कहीं से भी आपको मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि क्रिएटर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है बल्कि अपनी आवाज़ पे कॉन्फिडेंस है। आपने देखा होगा कि पहले लगता था कि यार ये हाई क्वालिटी वीडियो, ये एडिटिंग, ये वो होगा तभी सब होगा, लेकिन आज आप देखिए लोग स्टोरी सुनाते हैं और लोग बड़े चाव से उस स्टोरी को सुनते हैं। सो आपको क्रिएटर को फॉलो करने के लिए फेम इंपॉर्टेंट लगता है या बस रिलेशन, मतलब एक रिलेटिबिलिटी जो कहते हैं वो लगता है, बताइएगा ज़रूर। आप जो भी इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करते हैं उनके पीछे की कहानी सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311106। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

एक टाइम था, कोई गाना याद नहीं आ रहा, दोस्तों से पूछो मूवी का एक्टर कौन था, वेट करो कहीं से याद आ जाएगा। और थोड़ा सा हम दिमाग में जोर देते थे, किसी चीज का आंसर नहीं पता, लेट्स फाइंड आउट। आज गूगल, यूट्यूब, AI, एक क्वेश्चन और आंसर विद इन सेकेंड्स। कन्वीनियंट एब्सोल्युटली, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग लॉस भी हुआ है। क्यूरोसिटी का सस्पेंस, वो फीलिंग यार इसका आंसर क्या होगा, वो वाला डिस्कशन, वो गेस करने वाले लोग, वो रॉन्ग आंसर, मे बी नॉट नोइंग एवरीथिंग वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फन। ठीक है, क्योंकि आंसर जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो डिस्कशन। सो आज आप बताइए आपको क्या चूज करना है, हर सवाल का इंस्टेंट आंसर या लाइफ में वो थोड़ा सा मिस्ट्री भी रहना चाहिए जो हम पहले रहती थी। मतलब कई बार ऐसा होता था यार, लंबे लंबे डिस्कशन हो जाते थे, पूरा गूगल करना पड़ता था, रिसर्च करना पड़ता था, बट आज देखिए एवरीथिंग इज ऑन लाइक फोन, एक सेकंड में आपको सब कुछ पता चल जाता है। आप मुझे बताइए कि कौन सी लाइफ आपको ज्यादा अच्छी लगती है, विद इन सेकंड्स वाले आंसर या फिर थोड़ा डिस्कस करके, दोस्तों से बात करके चीजों को ढूंढना। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान। 3311063, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: अरे जा जा जा जा
1: अरे सुन सुन सुन सुन
0: जा जा जा जा
1: सुन सुन सुन सुन
2: ये है मिडनाइट लव।
3: आज रात एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछती हूँ, आपकी लाइफ में अगले 7 दिन में किसी मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसका आप जेन्युइनली वेट कर रहे हैं? कोई डिनर प्लान कर रखा है, या किसी दोस्त से मिलना है, या किसी का बर्थडे आ रहा है, या कोई मूवी देखनी थी, या फिर सैलरी आने का वेट कर रहे हैं, या फिर वीकेंड का वेट कर रहे थे, बस एक दिन जब अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, राइट? सो वीकेंड तो बस मतलब बिल्कुल आ ही गया है, कल थर्सडे है और इसी के साथ आपका वीकेंड हो जाएगा स्टार्ट। सो हम हैप्पीनेस को बहुत बड़ा बना देते हैं प्रमोशन, हॉलीडेज और बिग अचीवमेंट के साथ, बट साइकोलॉजी में एंटिसिपेशन इटसेल्फ कैन बी रिवॉर्डिंग। मतलब कभी कभी एक छोटी सी चीज़ फ्राइडे को फेवरेट रेस्टोरेंट जाना या फिर पूरे वीक को थोड़ा बेटर बना देती है। मे बी वी डोंट ऑलवेज नीड अ ह्यूज रीजन टू बी एक्साइटेड अबाउट लाइफ, एक छोटा सा आई कैंट वेट भी काफ़ी होता है। सो बिफोर वी चूज टुनाइट, आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखी होगी जिसका आप वेट कर रहे होंगे, तो बताइए व्हाट्स योर नेक्स्ट लिटिल आई कांट वेट मोमेंट। मैं हूँ मुस्कान और यह है मिडनाइट लाउंज, रात की वो जगह जहाँ स्टोरीज छोटी हो सकती हैं लेकिन सवाल थोड़े बड़े हैं। गुड नाइट फॉर नाउ, कल थर्सडे के वाइब के साथ सुनते रहिए रेडियो वाले 106.3 FM। फॉर नाउ आई हैव टू से बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: Yeah, Midnight Lounge.
2: Yeah, Midnight Lounge.
3: Suno, suno, suno. की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: चांदनी रातें।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: चांदनी

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।